0: रामायण पारायण
1: रामायण पारायण
0: रामायण पारायण पुराण पुराण
1: पुराण पुराण।